0: मैं कौन और क्या हाथ चलने के लिए हाथ चलने के लिए हाथ चल तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए
1: वापस तो ये वापस तो ये वापस तो ये
0: एक कन्हैया
1: एक कन्हैया
0: एक कन्हैया एक कन्हैया

चल या तो चल या तो चल तू तलक जाए तू तलक जाए तू तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक

अरे किस प्यार किस प्यार किस प्यार किस प्यार अच्छी अच्छी अच्छी।

अरे मारे कानू कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद

0: मैं कौन और क्या हाथ चलने के लिए
1: हाथ चलने के लिए
0: हाथ चल दू
1: तलक जाए
0: दू
1: तलक जाए
0: दू
1: तलक
0: जाए
1: तलक जाए
0: तलक जाए
1: वापस तो ये नहीं
0: वापस तो ये नहीं
1: वापस तो ये नहीं
0: एक कन्हैया
1: एक कन्हैया
0: एक कन्हैया याद है कुछ

अरे मारे कानू कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद

अच्छा यहाँ पर वो मज़मून शुरू होता है जिसको तसव्वुफ में कहते हैं तनज़्ज़ुलात सित्ता, छह मकामात का जिक्र। फरमाते हैं खाक पर लोगों इस ब्याहने पर, खाक पर लोगों इस ब्याहने पर,

अरे महादेव कानो कन्हैया, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा

चलने के लिए तो चलने के लिए तो चल दू तलक जाए तू तलक जाए तू तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए तलक जाए।